0: उत्साह संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान द्वारा विभूषित ख्याति प्राप्त ज्योतिष आचार्य पण्डित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथमा कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु नेपाल भर एकै साथ हरेक दिन बिहान 7 बजे

समुदायको लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 MHz। जलजला ट्राइब चेक।

हजुर नमस्कार नमस्कार नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत एवं न्यानो रात्रिकालीन अभिवादन छ तपाई सम्पूर्णलाई यति बेला कार्यक्रम गुड नाइटमा। श्रोता एवं मित्र तपाई यति बेला

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।